0: आफ्नै फिल्म टाइम चेक।
1: अहिले बिहानको 5 बज्यो।
2: टाइम चेक का साथमा ओम दयाल सुनसादी उद्योग तथा भाडा पसल सिद्धिचरण नगरपालिका 11 बाल मन्दिर माथि ओखलढुङ्गा।